0: ਹੋਣਾ।
1: ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ।
2: दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे,
0: दो चार
3: भगवान तेरी लीला क्रम पार है,
4: मतलब कदम पे वो अलग ही लेवल का बंदा था।
0: हाय तोरना।